हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करते हैं एक्सेंट समझने की स्ट्रगल को और ऑफिस में काम करने के कल्चरल शॉक को. एक्सेंट से शुरू करते हैं. मैं इंग्लिश पढ़ाती थी SSB के स्टूडेंट्स को एंड आई यूज टू टेक देयर क्लासेस एंड गिव देम टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्वालिफाई SSB फॉर इंग्लिश इंटरव्यूज एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस. और मुझे न्यूजीलैंड में इंग्लिश एक्सेंट समझने में आई एम टेलिंग यू लिटरली 1.5 साल लग गया. इंग्लिश समझ में आती थी पर कैजुअल कॉन्वर्जेशन में कोई क्या बोल जाता था अपनी स्लैंग लैंग्वेज में वो बिल्कुल सिल के ऊपर से निकल जाता था. बट एनी हाउ आई गॉट देयर. आप मुझे बताओ कि आपको एक्सेंट स्ट्रगल हुई और कितना टाइम लगा आपको एक्सेंट समझने में. और क्योंकि हम साउथलैंड के लिए शो कर रहे हैं मुझे पता है कि नॉर्थलैंड और साउथलैंड में एक्सेंट का बहुत फर्क है. साउथलैंड का एक्सेंट बहुत डिफरेंट है एंड वी टेंड टू रोल आवर आर्स. हाउ आर यू. इट्स नॉट हाउ आर यू, इट्स हाउ आर यू. अब बात करते हैं वर्किंग कल्चर के डिफरेंस की. अगर आपने इंडिया में काम किया है आपको पता है कि क्या वर्किंग स्टाइल होता है. और यहाँ पर इट इज़ वेरी कंपैरेटिवली लेड बैक एंड रिलैक्स्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉफ़ी कल्चर शॉक. इंडिया में आपका बॉस आपको कॉफ़ी पिलाता है तब पिलाता है जब उसने आपसे कोई फेवर लेना हो या आपसे कोई ऐसे या आपसे कोई ऐसी बात करनी हो जो पूरे ऑफिस के सामने नहीं हो सकती. यहाँ पर आपका हफ्ते की शुरुआत ही कॉफ़ी से होती है जो आपका सीनियर आपको ला के देता है. इज़न्ट इट अमेजिंग. और एवरी फ्राइडे आपका हफ्ता खत्म होता है वाइन सेशंस के साथ. दिस वॉज एक वर्किंग कल्चर में इतना कैजुअल होना अपने कॉलीग्स और अपने सीनियर्स के साथ इज डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट देन वर्किंग स्टाइल ऑफ इंडिया. इट केम एज अ शॉक टू मी बिकॉज आई वॉज न्यू हियर एजेस अगो. बट येस आई लव्ड इट. यू आर लिसनिंग टू रेडियो साउथलैंड 96.4 FM. I'm your host, Ramya, and the show is Namaste Southland.

Working in New Zealand. Confidence matters. Communications matters. Networking matters. Your work ethic does matter. अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं भी आती एक पल को पर आप काम करने के में बहुत अच्छे हो ये आपकी इज्जत करते हैं आपकी बहुत इज्जत होगी इफ यू कैन प्रूव दैट यू हैव अ गुड वर्क एथिक नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेटवर्किंग कैन टेक यू प्लेसेस इन वेस्टर्न कंट्रीज इफ दे आस्क यू फॉर रेफरेंसेस यू नो अपने नेटवर्क में से आप किसका नाम दे सकते हो रिलायबली जो आपको लेट डाउन नहीं करेगा इस कंट्री में अगर ग्रो करना है आगे बढ़ना है आपको वो रेफरेंसेस वो नेटवर्क चाहिए एंड समवेयर इट बिकम्स योर कुशन एज वेल आपका कम्युनिटी आपका नेटवर्क बन जाती है आपका वर्क प्लेस आपका नेटवर्क बन जाता है जो आप सोशली करते हो जाके इफ़ यू प्ले बैडमिंटन यू गो फॉर स्विमिंग यू टेक योर किड्स फॉर म्यूजिक लेसन उनके पेरेंट्स आपका नेटवर्क बन जाते हैं विल टेक अ ब्रेक हियर विद अ नेक्स्ट सॉन्ग आप सुन रहे हैं रेडियो साउथलैंड 96.4 FM मैं हूं रविया और शो का नाम है नमस्ते साउथलैंड